0: I think this is very important to put the Pakistani generals onto the spot. This is one part. The second is about gunmen, unknown gunmen. I will love to believe, right, that those gunmen are working onto our this thing. But I will like to put another a theory about it. I think after this strike, there is a change which is happening. That change which is happening at the top leadership of the terrorist leaders, certain elements who are not allowing the changes to happen the way they were required to be done
1: Okay.
0: are being neutralized within their system and not through the unknown gunmen or the Dhurandhars, which we
1: Very
0: like to
1: interesting.
0: believe
1: So
0: because,
1: what you're saying is that is a more radical crop of terrorists, the next generation of jihadis. They are being prepared or they are now coming to the fore. But I also want to understand from you, General Pandey, given your long experience in Jammu and Kashmir and in handling the state sponsor of radical Islamist terror, keeping Pakistan occupied along this 2,600-kilometer long Durand Line, is that more effective? I'll just come to that point in just a moment. I quickly want to cut across to Arvind Ojha joining us for more on this story. Arvind, ये जो वीडियो है, ये पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है कि किस तरह से पाकिस्तान, जैसे ये आतंकी कह रहे हैं कि ड्रोन के साए आकाश में थे, क्या नुकसान हुआ था पाकिस्तान में और किस तरह का खौफ है पाकिस्तान के आतंकियों में?
2: देखिए ये जो कन्फेशन है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कन्फेशन दो ऐसे चेहरों का है जो पहलगाम अटैक के बाद काफी ज्यादा हेडलाइंस में थे. पहला जो लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला खालिद है, जिसने साफ साफ पाकिस्तान की रैली में कन्फेस किया कि मुरिदके में बड़ा अटैक हुआ था जिसमें जो वहाँ आतंकी थे, जो लोग थे, उनके चीथड़े उड़ गए थे, उनके जो टुकड़े बिखरे हुए थे उसको इसने खुद ने समेटा. दूसरा जो कन्फेशन है वो हाफिज अब्दुल रऊफ का है. ये जो टेररिस्ट है ये भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी हेडलाइंस में आया था. जब मुरीदके में अटैक हुआ था तब वहां पर जो टेररिस्ट मारे गए थे उनको नमाजे जनाजा ये पढ़वा रहा था और पीछे पाक आर्मी के कई सीनियर ऑफिशियल मौजूद थे. तो ये दोनों का कन्फेशन है. और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है ये कन्फेशन कहां दिया गया. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान में काफी बेइज्जती हुई है, उसके बाद 7, 8, 9 और 10 मई को ये टास्क दिया था आसिम मुनीर ने लश्कर के आतंकियों को कि वो पाकिस्तान में रैली निकाले और जो पाक आर्मी है उसकी झूठी जीत का जश्न मनाए. तो ये झूठी जीत का जश्न मनाया जा रहा था और उसी दौरान ये अलग अलग रैली में ये बड़ा कन्फेशन दोनों ने किया है कि किस तरह से जो पाकिस्तान के एयरबेस थे वहां पर अटैक किया गया, जो ड्रोन आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया. यहां तक कि हाफिज अब्दुल रऊफ जो पाकिस्तान की आवाम है उससे भी दुखी है क्योंकि वहां की जनता ये मानने को तैयार नहीं है. हाफिज रऊफ अब्दुल रऊफ खुद वीडियो में कह रहा है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो हिंदुस्तान को नंबर दे रही है, हिंदुस्तान की जीत के दावे कर रही है, जबकि पाकिस्तान को वो नंबर कम दे रहे हैं जिससे वो दुखी है. तो ये अपने आप में एक बड़ा कन्फेशन है और जिस तरह से लगातार जो पाकिस्तान वो प्रोपेगेंडा फैला रहा था उसकी पोल जो वहां आतंकी है और दो जो टॉप बड़े आतंकी है उन्होंने पाकिस्तान में खुलेआम रैली में एक्सेप्ट किया. गौरव,
1: अच्छा ये बताइए कि भारत सरकार में उस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 100 आतंकी मारे गए थे और कुछ बड़े आतंकी नाम भी उनमें थे जो मस्जिद सुभानअल्लाह बहावलपुर में और इस मरकज तैयबा मुरीदके में आतंकी मारे गए थे और जो 9 कुल मिलाकर आतंक के गढ़ जिनको निशाना बनाया गया था. बाद में वो आंकड़ा सूत्रों के मुताबिक काफी बढ़ा था, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि कौन से बड़े आतंकी मारे गए थे और वो संख्या कितनी बढ़ गई थी?
2: देखिए वो 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और लेकिन जो भी आंकड़े थे उसको पाकिस्तान ने छुपाया और खासतौर से जो लश्कर के आतंकी थे चाहे जैश के आतंकी थे उनके जो हेडक्वार्टर थे उनको ध्वस्त किया गया था, उन्होंने ये आंकड़े छुपाए. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक साल बाद लश्कर के जो टॉप 2 कमांडर हैं जो पहलगाम अटैक के बाद हेडलाइंस में थे वो ऑन कैमरा ये कन्फेस कर रहे हैं कि मुरीदके में इतना बड़ा अटैक हुआ था कि वहां जो लोग थे उनके चीथड़े उड़ गए थे, उनके जो टुकड़े बिखरे हुए थे उसको खुद सैफुल्ला खालिद ने अपने अपने हाथों से समेटा था. और ये एक रैली में वो बोल रहा है जबकि दूसरी तरफ हाफिज अब्दुल रऊफ वो सीधे सीधे पाकिस्तान की पोल खोल रहा है. वो शशि

0: And now shifting focus to the big story, the NEET paper leak, and the probe is intensifying. Special Operations IG confirms India Today Newsbreak. He has said that the chemistry and biology papers were leaked and were viral. He says that 45 questions of chemistry and 90 of biology matched the actual examination paper, the actual NEET UG examination paper. As per the investigation, paper was sent to Rajasthan by a resident of Haryana. And the paper leaked from Nashik in Maharashtra. It was then sent to Haryana. And the CBI now probes the NEET paper leak case. The matter has now been handed over to the CBI. The CBI is probing, but the Special Operations IG has confirmed the India Today Newsbreak. When asked about the guest paper, IG Special Operations Group Rajasthan Ajay Pal Lamba has said that this is a paper set which is in public domain. PDF of chemistry and biology papers are in public domain. Exam paper of examination conducted by NEET is also in public domain, and they match the actual examination paper. The questions which were mentioned in the guest paper matched the actual examination paper of NEET UG. Let's listen in.
1: NEET pariksha ke paper ke out hone ke silsile mein jo लोगों के पास नीट परीक्षा 26 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी, उन लोगों से इन समस्त जिलों की और एसओजी की टीम ने मिलकर के पूछताछ की। ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है।
0: And my colleague Sharad Kumar is now joining us with more details on this. Sharad, Special Operations IG ne ye confirm kiya hai ki Nashik se paper leak hua tha aur ye Haryana bheja gaya tha. Aur kya jankari mil rahi hai puri investigation ke bare mein? Hame latest details dijiye aur do arrest hue unke bare mein bhi bataiye.
2: Dekhiye, do Jammu Ramgarh ke hain, Dinesh aur Mangilal. ये पेपर खरीद के गुरुग्राम के यस यादव से लेके आए थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये यहाँ पर ये अपने बेटे को सीकर 30 लाख रुपए में लेकर आए थे और सीकर अपने बेटे को देने गए थे, और फिर इन्हें लालच आ गया तो इन्होंने आगे बेचना शुरू कर दिया। एक राकेश को पकड़ा गया है देहरादून से, उसने 700 बच्चों तक ये पेपर पहुंचाया है। तो इस तरह से ये जो सीकर पहुंचा है, ये उस सीकर पहुंचने के बाद ये ई मित्र हो या फिर फोटोशेट की दुकान हो, पीडीएफ को डाउनलोड करके ऐसे दिखने लगा था। तो दिनेश और मांगीलाल से जब पूछताछ हो रही है और यश यादव से, तो ये पता चल रहा है कि दिनेश और मांगीलाल के घर के 4 बच्चे पिछली बार भी सेलेक्ट हुए थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। और ये बता इनसे ये बातचीत में पता चला है कि पिछली बार भी इनको पेपर मिल गया था। तो ये भी अपने आप में काफी चौंकाने वाली खबर है कि ये नेटवर्क का हिस्सा थे, ये ऐसे नेटवर्क काम कर रहा था, मगर इनके लालच की वजह से ये खुलासा हो पाया, वरना पूरे देश में ये अपने नेटवर्क से इस पेपर को फैला रहे थे। अलग अलग हिस्सों में सीबीआई ने वहां पर लोगों को हिरासत में लिया है, मगर जयपुर में लेने वाले दिनेश और मांगीलाल, इन दोनों से पूछताछ हो रही है और कहा जा रहा है कि इनसे पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं
0: जी।
2: किस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा था और कितने सालों से नेटवर्क काम कर रहा था। इसमें दिनेश एक राजनीतिक पार्टी की युवा मोर्चा से भी जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहा है, इसलिए इन दोनों से पूछताछ करके और जानकारियां इकट्ठा कर रही है। सीबीआई फिलहाल अभी जयपुर में ही है, एसओजी के ऑफिस में।
0: जी शरद, हमारे साथ बने रहिए। सो एज माय कॉलीग शरद वाज पॉइंटिंग आउट, वी आर गेटिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू क्रूशियल अरेस्ट दैट हैव बीन मेड इन दिस नीट लीक केस, एंड two accused have been arrested. These are two brothers who bought leaked papers, who have been held. The duo bought leaked paper at 30 lakh rupees and the charges that they gave paper to a son who was taking the NEET examination and sold the leaked paper to others as well. Now, there's a sensational claim that we're learning that the last year paper got leaked too. So it's not just the 2024 NEET examination paper and not just the 2026 NEET examination paper, but also the last year's paper, which is the 2025 NEET examination paper that got leaked too. This is what we are learning. 4 crore of accused cleared NEET in 2025. So these accused, their relatives were appearing in the 2025 NEET examination as well. And four of them had cleared the NEET examination 2025. The arrested reportedly are linked to a political party. And the images of Mangilal and Dinesh Bival have been also accessed. We're showing you the visuals of both of them. They bought papers from Gurugram doctor, and WhatsApp and Telegram were used to give paper to 700 people. PDF copies of the leaked paper were also sold. My colleague Sharad continues to stay with us. Sharad, aap bata rahe the ki kaise ye ek bahut bada racket hai jiska ye dono bhai ek part the jinhone paper kharida aur ek bahut bada claim samne aa raha hai ki paper pichle saal bhi leak hua tha, jaisa ki aapne bataya ki inhi ke ghar ke char logo ne pichle saal bhi paper clear kiya tha.
2: बिल्कुल यही पूछताछ कर रही है सीबीआई यहां पर कि किस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा था और कब से ये काम कर रहे थे, क्योंकि देखिए जो पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने बताया है कि इन्हें एक महीना पहले से पता था कि पेपर इनके पास आ जाएगा और इन्होंने भी आगे एक महीना पहले बता दिया था कि पेपर आ रहा है, आते ही मिल जाएगा. मगर उसके बाद जिस तरह से पीडीएफ डाउनलोड होकर बिकने लगा, कई कॉलेज संचालकों ने जो ग्रुप बना रखा है, हॉस्टल संचालकों ने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, उसमें भी ये पेपर मिले हैं. तो कुल मिलाकर ये जगह जगह से जो लोग पकड़े गए हैं उनको सबको दिल्ली लेकर जाया जाएगा और वहां पर एक पूछताछ करके ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये निकला कहां से है, क्योंकि नासिक वाला पूछताछ में बता रहा है कि हम पुणे से लेकर आए थे. तो अब ये सीबीआई को एस्टेब्लिश करना है कि ये पेपर निकला कहाँ से है, किस प्रिंटिंग प्रेस से निकला है और किस तरह से पूरे देश में घूमा है, क्योंकि जो अब तक खुलासे बता रहे हैं कि करीब करीब पूरे देश में ये पेपर जा चुका था, जहां पर लोग अपने अपने नेटवर्क से इसे बांट रहे थे. लेकिन चूंकि सीकर एक कोचिंग हब है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं जो मेडिकल की तैयारी कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से इसे बांटना शुरू किया उसके बाद ये खुलासा हुआ. सीकर से ही एक बच्चे ने चूरू के रहने वाले केरल में एमबीबीएस कर रहे थे उसको भेज दिया, उसने अपने पिता को भेज दिया हॉस्टल में बेचने के लिए, फिर वहां से ये पूरा मामला खुला. पिता पहुंचे पुलिस के पास और 8 बजे आईबी को इनपुट मिला और वहां से फिर राजस्थान पुलिस के एसओजी को जांच मिली.
0: जी शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो दैट इज द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन एज फार एज द टू क्रूशियल अरेस्ट इन द नीट लीक केस आर कंसर्न. टू पीपल हैव सो फार बीन अरेस्टेड एंड इट इज ऑल्सो बीइंग अलेज्ड, दो इट इज दीज क्लेम्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इफ द पेपर वॉज लीक्ड लास्ट ईयर एज वेल. The NEET paper leak controversy continues to snowball with mounting evidence pointing to a wider organized network spanning multiple states. As the National Testing Agency faces intense scrutiny over lapses, the CBI has now intensified its probe with fresh leads emerging from Rajasthan, Maharashtra and Haryana. Sources say Rajasthan police have shared a list of 150 students, 70 parents and 13 MBBS counselors with the CBI, all allegedly linked to leaked guest papers. Investigators also claim that arrested accused Shubham Kerner allegedly received the paper through Telegram through another Pune-based accused. Sources also tell us that Shubham allegedly purchased it for 10 lakh rupees and sold it onward for 15 lakh rupees to a Haryana-based buyer. Meanwhile, the sources in Education Ministry say that student welfare remains its top priority, defending that the decision to cancel the examination and order a CBI probe as part of its zero tolerance policy against malpractice.
3: एक रिक्वेस्ट आई थी नीट परीक्षा मामले में, एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी. अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने डैमेज यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
4: जांच एजेंसियों ने पाया होगा उसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा यहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से या काश्मीर से, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे।
5: केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सजा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा, लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो NTA है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कंडक्ट करने की। पेपर बनाने वाले, छापने वाले, कंडक्ट करने वाले कौन जिम्मेदार थे? अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे अब तक पकड़े जाते, तो कोई ना कोई सिंडिकेट माफिया काम कर रहा है पूरे देश में। और बीजेपी की सरकारें जब डबल इंजन की बात करती हैं सिर्फ कामयाबी के लिए, जो फेलियर्स हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों में पानी फेरा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
0: And we're now being joined by former NSUI President Varun Chaudhary on the broadcast. Varun, 2024 में आपके नेतृत्व में NSUI ने काफी प्रोटेस्ट किया था, जो नीट UG का पेपर लीक हुआ था 2024 में, 2 साल पहले काफी मांगे की थी आपने, कई दिनों तक प्रोटेस्ट चले। आज 2 साल बाद NSUI फिर सड़कों पे है, दोबारा पेपर लीक हुआ है, 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे?
6: अंजलि जी, देखो मैंने 2 साल पहले भी कहा था, मैं 2 साल बाद फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है NTA, और NTA के पीछे मैं मानता हूँ जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं देवेंद्र प्रधान जी, वो जिम्मेदार हैं। 2 साल पहले भी मैंने कहा था कि NTA को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस टाइम भी लगभग 24 लाख छात्रों का भविष्य खराब करा, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने NTA पर कार्रवाई करने की बजाय, आपको याद होगा 2 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और NTA का सहारा दिया था और NTA के बिहाफ पे जस्टिफिकेशन दे रहे थे। तो मैं फिर कहता हूँ जो NTA पेपर कराने में विफल है, और खाली ये नीट के एग्जाम की बात है, जो भी NTA एग्जाम कराता है उसमें कुछ ना कुछ धांधली पाई जाती है, कुछ ना गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की और शिक्षा मंत्री की कि बार बार वो नीट के एग्जाम NTA के माध्यम से कराना चाहते हैं? तो खुद या तो खुद शामिल है या वो इस चीज को छात्रों का भविष्य खराब करना चाहते हैं।
0: जी, आपने 2024 में कई मांगे रखी थी सिस्टम के खिलाफ, आपने कई आवाज उठाई थी, क्या आपको लगता है कि 2 साल बाद उस पर कोई एक्शन लिया गया है या फिर उन सब मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है?
6: देखिए, उसी का आज कारण है कि वो जो मेरी मांगे थी वो मेरी आज भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मांगे हैं कि तुरंत NTA को बैन करा जाए और केंद्र में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तुरंत उनके पद से हटाया जाए। यही मांग मेरी पहले थी, ये मांग मेरी आज है। अगर मोदी जी ये काम अभी भी तुरंत कर देंगे तो मुझे लगता है लगभग 22 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब करने जा रही है सरकार, उनका भविष्य बच पाएगा, वरना दोबारा ही नीट का एग्जाम यही NTA कराएगी, दोबारा धांधली पाई जाएगी। आपको लगता है अगर किसी जगह पर बार बार चोरी होती है, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी NTA के डायरेक्टर की, मुझे शर्म आई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर कि अगर किसी एरिया में बार बार चोरी होती है तो उसका तार ये माना जाता है कि या तो वहां पे जो पुलिस है उसके तार जुड़े हुए हैं, इसलिए बार बार चोरी हो रही है, वो विफल रही है। जब बार बार NTA जो एग्जाम कादर में धांधली पाई जाती है तो मतलब कहीं ना कहीं NTA जिम्मेदार है। तो वो स्पष्टीकरण देने की बजाय और लीला पोती कर रहे हैं जो NTA के डायरेक्टर है, तो शर्म आनी चाहिए। और जिस तरीके से NTA के डायरेक्टर का प्रमोशन करा जा रहा था बीजेपी की सरकार में, जबकि उन्हें एक सजा देनी चाहिए थी, जिस तरीके से बार बार पेपर लीक NTA के माध्यम से होता है, तो देखने को मिलता है, मैं पक्का मानता हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस धांधली में शामिल नहीं है तो क्या मजबूरी है NTA को बैन करने में? उनको क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि NTA को उन्हें बैन करने में तकलीफ आ रही है? सच्चाई ये है वो इस स्कैम में खुद शामिल है, इसलिए बार बार वो NTA का बचाव कर रहे हैं। और मेरी पहले भी ये मांग थी, फिर मांग है कि अगर मोदी जी देश के भविष्य का, छात्रों का भविष्य बचाना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि नीट के छात्रों का भविष्य बचे, तो तुरंत NTA को बैन करा जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का तुरंत इस्तीफा लिया जाए।
0: तो वरुण, क्या आपको लगता है कि ऐसे घोटालों के बाद सिर्फ शोर होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, दिलासा दिया जाता है, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाता है? क्योंकि 2 साल बाद आज हम फिर उसी मोड़ पे खड़े हैं, फिर बच्चे सड़कों पे हैं, फिर वो ही मांगे दोबारा उठाई जा रही हैं।
6: देखिए, ये बात सच्चाई है, और इन्होंने जो रीनीट भी कराया गया है, कल राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट करा, इनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हुआ, उस प्रेशर बिल्टअप के चक्कर में उन्होंने एग्जाम कैंसिल करा, ये बात मानी। 2 साल पहले तो ये मानने को भी पहले तैयार नहीं थे कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर खुले तौर पर जो पेपर व्हाट्सएप पे घूमने को देखने को मिला, अब खाली रीनीट कराने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको तुरंत NTA को बैन करना पड़ेगा, जिससे कि छात्रों को एक विश्वास जगे उस एग्जाम में जो वो देने जा रहे हैं। और ये एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है, नीट के माध्यम से देश के डॉक्टर्स बनते हैं। देश के डॉक्टर हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट की सेवा करते हैं और हमारे बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। तो हमारे देश की किडनी, लंग्स के सबके साथ खिलवाड़ करने जा रही है केंद्र सरकार। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को। तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया जाए और एनटी को बैन करा जाए।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट वॉज फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट स्लैमिंग द गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन इन द नीट यूजी पेपर लीक केस विच हैपन टू ईयर्स अगो एज वेल। देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट दैट वेंट ऑन फॉर डेज एंड देन टू ईयर्स लेटर वेयर विटनेसिंग द सेम सीन्स वंस अगेन। इन फैक्ट The investigation continues. Two people have been arrested in this case so far, and what we are learning, there are multiple versions that are emerging. Some say that the paper was leaked from Nashik in Maharashtra. Some say that it was not in Nashik, but it happened in Pune, and from there it was sent to Haryana. It was bought for lakhs of rupees and then was sent for even more at a higher price. And let us also tell you about this whole Telegram, Cash and Interstate Network. So as per sources, what we are learning is that paper was not in fact printed in Nashik. The accused Shubham received paper through Telegram from Pune-based man, and Shubham bought the paper for 10 lakh rupees. Shubham sold the paper for 15 lakh to Haryana-based buyer. This is what we are learning as per sources. Of course, there are multiple versions that are emerging. Some say that the paper was in fact leaked from Nashik in Maharashtra, but some sources also say that it happened from a Pune-based man who sold it to a man in Nashik. The paper was not printed in Nashik, and then it went it was bought by Shubham Kerner for 10 lakh rupees, and after which it was sold at a higher price for 15 lakh rupees to Haryana-based buyer. And NEET UG 2026 has been scrapped after sensational allegations of a nationwide paper leak racket. Investigators claim a so-called guest paper circulated before the exam matched several actual questions, and now the future of over 22 lakh students is in limbo. Here's a report. After the NEET 2024 scandal shook the country with allegations of paper leaks, grace marks and inflated scores, history has repeated itself. And India's biggest medical entrance exam stands cancelled once again. Over 22 lakh students walked into exam centres on May 3rd, believing that this would be a fair fight. Tight security, strict frisking, surveillance, multi-layer checks. But behind the scenes, investigators now suspect the paper may have already been leaked and circulating. The Rajasthan Police Special Operations Group is probing claims that a so-called guest paper carrying over 400 questions was distributed before the exam, and shockingly, many of those questions allegedly matched the actual NEET paper. And India Today was the first and only channel to expose this on May 11 at 8:55 a.m. We're getting some big breaking news. There's another malpractices again being reported in the NEET UG examination. So after 2024, NEET controversy of paper leak and malpractices, now in 2026 as well, similar reports are emerging. Stunning charge of NEET paper fraud. This time, NEET guest paper reaches students 2 days early. And as per the Rajasthan police, 140 questions match the exam paper.
7: 24 hours later came the big impact. Stunning admission from the National Testing Agency itself, NEET UG 2026 being cancelled because the exam had become, in its own words, unfit to stand. And now, the probe is uncovering what investigators suspect could be a pan-India leak racket. Sources say the leak may have originated from a printing press in Nashik, Maharashtra, where the NEET papers were reportedly printed. An individual linked to the press allegedly passed the paper through a chain system. It is alleged that all 90 biology questions and all 45 chemistry questions had reached select individuals before the examination. In Sikar, these papers were allegedly circulated inside coaching institutes as guest papers, with students being told questions will come from this only. Sources claim the paper was resold repeatedly for amounts ranging from 5,000 rupees to 30 lakh rupees, exposing what investigators now suspect is a highly organized multi-state racket. The center has now ordered a full-scale CBI probe.
8: We had decided on a zero tolerance policy and we wanted to ensure that majority of the students are not adversely impacted and to ensure that anyone who is trying to break the resolve of NTA to conduct free examination, anyone who's trying to scam, anyone who's trying to do any malpractice, their ambitions will be thwarted. Their objectives will be thwarted. We would not let them play around with the future of our children.
7: For lakhs of students, the nightmare begins again. Fresh dates will now be announced. No new registration will be required. Fees will be refunded and admit cards reissued. So what should students do now? Candidates are being advised to rely only on official NTA updates and stay away from rumours and misinformation circulating on social media. With fresh dates expected soon, students may now have to rework their preparation strategy and remain exam ready all over again. But the bigger question remains, if India's most high-stakes exam can be compromised twice in 2 years, can students still trust the system meant to decide their future? Bureau Report, India Today.
0: And we're now getting some more breaking news. This is regarding the TCS conversion racket, and we're learning of bulldozer action in this case. The helper of the key accused faces bulldozer action in Sambhaji Nagar in Maharashtra. AIMIM corporator Matin Patel faces a bulldozer. Matin sheltered the main accused Nida Khan on the run. And the civic body is saying that the illegal parts of Patel's home are being razed. We're showing you the visuals from Sambhaji Nagar in Maharashtra, where this bulldozer action is taking place. The conversion accused Nida Khan was arrested last week. And there are charges of rape and sexual exploitation in this case. And the action has intensified following Nida Khan's link. Now, bulldozer action is what is being seen at Matin Patel's home and office, who gave shelter to the main accused in this case, Nida Khan. And we're now being joined by Israr Chishti, who's getting us more details. Israr, bulldozer action pe aur kya jankari mil rahi hai? Matin Patel ka exact kya role tha? Kaise wo is pure case se jude hue the?
9: Dekhiye, main bata dun ki aapko TCS Dharmantaran mamle ki jo mukhya aaropi thi Nida Khan, use 5 मई को छत्रपति संभाजी नगर से नासिक की जो क्राइम ब्रांच थी उसने अरेस्ट किया था, और उसके बाद से जो यहाँ के लोकल पार्षद है नारे गांव के, जहाँ जिस इलाके से निदा खान को गिरफ्तार किया गया था, वहाँ के जो पार्षद है मतीन पटेल, उन पर ये आरोप लगाया गया कि मतीन पटेल ने ही निदा खान को यहाँ पर आसरा दिया था। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतीन पटेल का घर है उसे अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले नगर निगम की ओर से यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया था, और उसमें बताया गया था कि मतीन पटेल का ये घर है और ऑफिस है वो अवैध निर्माण है। जिसके बाद नोटिस लगने के बाद मतीन पटेल जो है तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से औरंगाबाद बेंच में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उन्हें 15 दिन की मोहलत चाहिए। लेकिन जब कल हेयरिंग हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने फैसला नहीं सुनाया और कोर्ट अदालत ने 18 तारीख तक के इस केस को आगे बढ़ाने का कहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर इससे नहीं दिया था। जिसके बाद आज 3 दिन हो रहे हैं जब नगर निगम की ओर से यहाँ पर नोटिस लगाया गया था और 3 दिन के ही अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 दिन होने के बाद आज सुबह 6:30 से ही यहाँ पर बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। उनका आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतीन पटेल का सामने ऑफिस हुआ करता था, जिसे अभी जमीन दोस्त कर दिया गया है, और पीछे जो देखेंगे आप तो उनका जो घर हुआ करता है उसे अभी तोड़ने की प्रक्रिया चालू है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस का भी यहाँ पर सख्त बंदोबस्त किया गया है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के भी जो अधिकारी और कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो।
0: जी इसरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट वाज इसरार गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स राइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर द बुलडोजर एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द टीसीएस कन्वर्जन रिंग। दिस इज टेकिंग प्लेस एट द होम एंड ऑफिस ऑफ AIMIM कॉर्पोरेटर मतिन पटेल। नाउ हाउ इज मतिन पटेल लिंक्ड टू दिस केस? ही इज द वन हु गेव शेल्टर टू द मेन अक्यूज निदा खान हु वॉज अरेस्टेड लास्ट वीक इन द टीसीएस कन्वर्जन केस एंड नाउ ही इज फेसिंग बुलडोजर एक्शन। दीज आर द विजुअल्स फ्रॉम संभाजी नगर वेयर दिस action is taking place. And now let's shift our focus to Kerala. 10 days on after the results were announced, Congress is yet to decide on the chief minister face. Clueless Congress failed to decide on the Kerala chief minister. Decisive mandate for the UDF, but undecisive Congress top brass. And Mallikarjun Kharge, the Congress chief, and Rahul Gandhi failed to choose the Kerala chief minister even after 10 days of the results. Kerala chief minister conundrum plagues Congress once again. And there are three contenders in this chief minister race, which includes KC Venugopal, VD Satishan, Ramesh Chennithala, but there's still no clarity. Every day we get to know that there might be some clarity by evening, but till now there is no clarity as to who will be the Keralam chief minister. My colleague Shibimol is now joining us with more details on this. Shibimol, why a delay of 10 days despite a decisive mandate? Why is the Congress facing so much difficulty in announcing the chief minister face?
10: Well, Anjali, this is the same question that's been asked by the party supporters and the people of Kerala also right now to the Congress High Command, because it's been a 10-day long wait. Earlier, everybody expected a delay, but this has gone beyond what everybody expected. It's been 10 days. There's a clear mandate, unlike the situation in Tamil Nadu where there was a hung assembly. In a state where there was a hung assembly, all the alliance discussions, everything got over and the chief minister has already sworn, but that's not the case in Kerala. So naturally, there's a lot of frustration, a lot of questions being raised to the High Command. What we're understanding is that there are three contenders, and these three contenders are High Command is trying to bring in some sort of understanding between all three parties. One more thing is that usually for the Congress, they will only take the number of the MLA support. That's what we have seen in most cases. Whoever gets the maximum number of MLA support, they'll go in with that person. But here, unlike the previous situations, we saw very strong protests taking place on ground by the supporters of VD Satishan, who was the opposition leader who led this election campaign in the last 5 years. So that public sentiment is being informed by the party, some of the party's leaders and also party's alliance partners to the High Command. So that is one of the main reasons why the elections, why the CM has not been announced by the High Command. They're trying to calm the supporters first and then take the name is what we're understanding. That's why there was delay. But because KC Venugopal has got maximum number of support from MLAs, and also the fact that if KC Venugopal is being shifted to Kerala as the Chief Minister of Kerala, what about the organization secretary? He has been the organization secretary for a while now. So who's going to handle that? What will happen? The High Command is also another concern that's been raised within the party. So multiple concerns that's not been addressed, but that's not something that the people of Kerala or the party supporters want to know, because they have been in opposition for 10 long years. So what was being done so far is what the people are asking, the supporters are asking. Started as memes and trolls has now become very harsh reactions that's coming in from the people right now.
0: Right. Shibimol, and this leadership deadlock, does this indicate the deep factionalism in the Kerala Congress unit, as you were rightly mentioning, that MLAs are supporting one of the contenders, but there's the cadre is supporting the other? And is that what is leading to the delay?
10: Well, exactly, because, like I pointed out, usually only MLA support matters. But we saw the supporters of the party, these three party leaders coming on ground, on street and protesting against each other. The fact is they're protesting not against the opposition party, but against their own leadership and against their own party leaders. So the first thing we
0: All right, Shibimol, thank you for those details. We'll keep coming back to you for more updates on the Keralam chief minister race. Right now, we're getting some breaking news. And Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's stepbrother Prateek Yadav passes away. Prateek Yadav was the son of Samajwadi Party founder Mulayam Singh. And Prateek Yadav was the husband of Aparna Yadav. Prateek passed away at the civil hospital in Lucknow. That is what we are learning. And he was the husband of BJP leader Aparna Yadav. And he's the stepbrother of Akhilesh Yadav. He has passed away. He is the son of Samajwadi Party founder Mulayam Singh. And the husband of BJP leader Aparna Yadav, he passed away at the civil hospital in Lucknow. My colleague Ashish Srivastav is now joining us with more details on this. Ashish, what is the cause of the death of Prateek Yadav?
11: Confirmed that he has been sent to civil hospital of Lucknow, and where it was a little cardiac problem at that moment, and it is found that death of the Mulayam Singh Yadav's son and Akhilesh Yadav's stepbrother. Prateek Yadav was brought to civil hospital for treatment, but in that moment, Prateek Yadav died during the treatment in civil hospital because Prateek was his wife, Aparna Yadav, in a BJP leader, and she was also with him in that moment when this incident. Aparna Yadav is currently the vice president of the Women's Commission, so also you can understand, and this is what in early morning it was the issue as created in that moment. He has been taken to the civil hospital due to the cardiac virus. On that moment, the treatment was running, but unfortunately, this could have taken place in the hospital at home. Samajwadi Party leaders and other family members also are present in the hospital right now, and they are just also getting information for everyone in this town.
0: All right, Ashish, do stay with us. So what we're learning is that the cardiac arrest is the cause of death of Prateek Yadav. Remember, he was just 38 years old and he was a health freak. As we're showing you his visuals, he ran a gym and he was superbly fit, as you can see in these visuals. And this is yet another case of what we have witnessed in the past, how many celebrities who are absolutely fit, who take care of their health, who go to gyms, exercise regularly, take healthy diets, despite this healthy lifestyle, they die young because of cardiac arrest. And this is yet another example of that. Prateek Yadav, the stepbrother of Akhilesh Yadav, the son of Mulayam Singh Yadav,

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: Like I said before, we better hold the sins.

ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिलीभगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहाँ है, उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।

0: Hi, good afternoon once again, and thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samant. First up, we cut across to breaking news coming in. Pictures of the NEET leak accused that have been seen with Rajasthan Education Minister. That's right. The pictures of the accused, the man who's responsible for the leaked paper, his picture was seen with Madan Dilawar, Rajasthan Education Minister. In fact, another picture of the accused that was seen with BJP MLA Mahendra. This link that is now being scrutinized. Two crucial arrests that have been made in the NEET leak probe, and two brothers who bought that leaked paper, they have been held. The duo allegedly bought the leaked paper at 30 lakh rupees, and the charge against them that they gave the paper to one of them whose son was taking the NEET paper. The charge also is that the leaked paper that was sold to others as well. This is a sensational claim coming in that the leak was not just that happened this year, but even happened last year as well, is what they have claimed. Why? Because four of the kin of the accused cleared the NEET paper in 2025. And those are the details coming in from the accused, arrested reportedly, linked to a political party, is what is now being looked into. We've also put out the pictures of the accused on the right of your screens. Images of Mangi Lal and Dinesh Biwal have been accessed by India Today. These are the men who have been accused of the leaked paper of NEET 2026. But shocking details that have come in of how the paper had leaked even in 2025. Papers that were bought from a Gurugram doctor. And not just that, WhatsApp, Telegram, that was used to give the paper to 700 students. Let me take this to Sharad Kumar joining us on the broadcast. Sharad, aur kya jankari hai in do accused ke bare mein, khaskar jo BJP ka link ab emerge hua hai, kis tarah se unka ek photo jo hai Rajasthan Education Minister ke saath hai, BJP MLA ke saath hai, aur kya jankari hai police ke paas?
1: ठीक है दिनेश, शुरू से ही एक्टिव मेंबर है बीजेपी का, युवा मोर्चा में पदाधिकारी रह चुका और यहाँ भी स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और मांगी लाल इसका बड़ा भाई है। मांगी लाल ने पिछली बार अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा था ऐसा कहा जा रहा है, अपने तीन बहनों के लिए के बेटियों को भी, तो कुल चार लोग इस फैमिली से पिछली बार नीट में पास हुए थे। अभी हम जब इसके घर पे पहुंचे जमुआ रामगढ़ में, तो दिनेश की पत्नी रजनी ने कंफर्म किया कि पिछली बार चार लोग सेलेक्ट हुए थे और ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से एक्टिव हैं। जमुआ रामगढ़ में लोगों ने कहा कि जो स्थानीय विधायक हैं महेंद्र पाल मीणा, वो उनका सारा काम यही देखते हैं, तो ये बीजेपी से लिंक है, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ तस्वीर है और बाकी सारे नेताओं के साथ तस्वीर है दोनों भाइयों के, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के काम करते हैं, पैसे वाले हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, स्थानीय विधायक के खास भी हैं, तो बीजेपी का एक लिंक तो है। लेकिन ये जो लिंक है कि पेपर माफिया वाला, ये इनका एक पैरेलल था, पिछले बार बड़े भाई लेकर आया था, इस बार छोटा भाई अपने बेटे ऋषि के लिए लेके आया था और ऋषि चिकर में पड़ रहा था, पिछली बार इसके घर के लोग भी

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: TuneIn has the music.
4: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
5: TuneIn Poolside has the music I love.
4: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
6: Let's go. Yeah,
4: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: देखिए मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी कि ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने. फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को मैंने सुना है या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही राजस्थान से आ रही. तब केस SOG को दिया गया. उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया. पर ये समझ के परे हैं क्या कारण था कि FIR तक दर्ज नहीं कर रहे थे. 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है. 3 साल लगातार NTA से पेपर आउट हो रहे हैं. जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी.

0: And we cut across to breaking news coming in. ABVP is now staging a protest over Neet Rao. This protest that is happening outside the National Testing Agency's office. Let me cut across to my colleague Sushant Mehra, who is at the protest site. Sushant, what's happening there?
1: वो प्रिंटिंग प्रेस अपनी क्यों नहीं रखती है? तमाम जो छात्र हैं, जो एग्जाम सेंटर्स देने के लिए आते हैं, उनके अलग अलग सेंटर्स जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, उनको वहां पर परेशानी होती है और इस तमाम जो एजेंसी है उसको लेकर के अब सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन बच्चों के भविष्य का क्या, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, जिनको उम्मीद थी कि उनका एग्जाम अच्छे हुए हैं, उनको अच्छे भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके भविष्य का क्या होगा? उनके परिवार वाले लगातार ये सवाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार पेपर रद्द हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए ही लगातार यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अभी आप देखेंगे कि कई सारे छात्र, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो टीम थे, छात्र थे, वो चाहते थे कि वो अंदर जाकर के एनटीए के जो अधिकारी है उनसे बातचीत करें। उनमें से कई सारे लोगों का जो डेलीगेशन है वो फिलहाल अंदर गया है। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी जो है वो देखने को मिली, क्योंकि भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरामैन से लगातार कहूंगा कि वो आगे की तरफ आए और तस्वीरें दिखाएंगे कि एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। बैरिकेड जो है वो एबीवी के छात्रों द्वारा जो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, पुलिस बल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए एक जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से छात्रों के बीच में और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए,
0: And from outside the NTA's office in Delhi, where you see AVVP students who are staging a protest. Yesterday you had seen how NSAR students had also staged a protest over the cancellation of the NEET exam after the paper leak. These are angry students who are now on the ground questioning the NTA over how paper leak has been repeating year on year. Remember on 2024, when it was on record of how the paper had leaked, similarly what happened in 2026 after the quote-unquote guest paper that circulated, and there was a match of over 140 questions to what actually came in the paper that was conducted on the 3rd of May. Students across the country are angry, and there you see widespread protests that are taking place in New Delhi. These are pictures coming in from outside the National Testing Agency's office, where there was heavy barricading, but angry protesters who toppled these barricades despite heavy security outside the NTA office. 22 lakh students who've given this exam, and they all stand failed by the NTA, as they will now have to give a re-exam. Let me take this back to my colleague Sushant Mehra, who continues to stay with us on the broadcast. Sushant, वहाँ पर काफी पुलिस है, सिक्योरिटी है, उसके बावजूद इतना गुस्सा है स्टूडेंट्स में कि अभी बैरिकेड्स भी टॉपल हुए हैं।
1: हाँ, देखिए छात्रों में सीधे तौर पर गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब से ये नीट की परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद से देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। ये एनटीए का दफ्तर है जहाँ पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात करना पड़ा है। दरअसल तमाम जो एवीवीपी के छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, ये तस्वीरें पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प की जो है वो नजर आ रही है। बैरिकेड दो बार जो है वो तोड़ा गया है, तमाम जो छात्र है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये छात्र अंदर की तरफ ना जा सके। अंदर की तरफ अगर बात की जाए, ये एनटीए के दफ्तर में इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है जिसकी तरफ से जांच जो है वो इस पूरे मामले की जा रही है, क्योंकि कल ही जब ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ये पूरा मामले को देखते हुए सीबीआई जांच को जो है वो सौंप दिया गया था। लेकिन अब तक अगर कहा जाए तो कल जिस तरीके से एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया, अब एवीवीपी जो है वो यहाँ पर मांग कर रही है कि इस पूरी बॉडी को जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया जाए। कई तमाम छात्र, जो कि लाखों छात्र इस पूरे मामले को लेकर के एग्जाम देते हैं, इस पे सवाल उठता है कि इन तमाम छात्रों के भविष्य को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो कई सालों से इस पूरे पढ़ाई की दिन रात मेहनत करते हैं, उनके परिवार जुड़े होते हैं। लेकिन अब तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर नारेबाजी जो है वो इस वक्त जो है वो साफ तौर पर होती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिए कि जहाँ जहाँ आपको तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर तमाम आपको छात्र इस वक्त जो है वो एवीवीपी के नजर आएंगे, जो कि प्रदर्शन करते हुए इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कई सारे छात्र हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत जो है वो की जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम छात्रों के भविष्य का सवाल है और इन भविष्य को लेकर के तमाम ये जो छात्र है वो दिन रात मेहनत करते हैं और अभी इसी को लेकर के यहाँ पर अब जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर एनटीए के दफ्तर के बाहर जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है।
0: Oh yes, absolutely. Sushant, they're getting us all the details on the ground. Anger brewing among students, and this is not about ABVP or NSUI. Students who have taken a hit across the country. 22 lakh aspirants who gave the NEET exam but are now preparing for a re-exam. Why? Because the paper had leaked. Anger is growing because this is not the first time that the paper has leaked. In fact, even as the CBI investigation continues and several arrests are being made over the interstate investigation and how they are trying to pin down the culprits, it is also clear that the paper has been leaked several times in the past. There you see how there is heavy security deployment on the ground. I want to take this back to Sushant, who's with us on the broadcast. Sushant, kafi jhadap hai abhi. Security forces or students ke beech mein?
1: Dekhi, jab... देखिए जब ये तमाम छात्र यहाँ पहुंचे थे शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे लेकिन कई सारे छात्र जो है वो एक अंदर बॉडी के पास जाकर के मिलना चाहते थे लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से रोका गया जिसके बाद झड़प की तस्वीरें जो है वो नजर आई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि अभी भी कई सारे छात्र इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको बैरिगेटिंग के पास जो है वो नजर आएंगे और लगातार इन छात्रों की पुलिस के साथ झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। कई सारे छात्र जो बाहर है वो चाहते हैं कि वो अंदर जाकर के बातचीत करें और इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई भी है जो है वो अंदर मौजूद है। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से महिला छात्र
0: Oh yes, absolutely. And how the security forces take the situation under control is now something we are keeping a very close eye on. We have to slip into a very short commercial break right now, but we are leaving you with these pictures. Anger growing among students as they are demanding justice, most importantly, to pin down those who are responsible for this paper leak. Keeping a close eye on this story, do stay with us on India Today for the very latest.
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba.

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: लीक हो चुका तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है. इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है. मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां है, उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो. और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे लीक, लीक पे. ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है. जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग. इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन. लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा. यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है.
7: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Good afternoon and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathur, and we're opening this bulletin with some breaking news that's coming in. The RSS is batting for India-Pakistan talks to resolve the conflict. RSS backs talks despite Pakistan pressuring. RSS's Dattatreya Hosable says people-to-people contact with Pakistan is crucial. Hosable, who's the general secretary of the RSS, has now said that no trust in Pakistan political leadership, but India-Pakistan have been one nation. We must protect self-respect of India. Window for dialogue should remain open with Pakistan. People-to-people contact is key. This is the statement coming in from RSS general secretary Dattatreya Hosable, who's noting that the trust in Pakistan's military and political leadership is completely missing in India. Now, remember, top RSS functionary Dattatreya Hosable on Tuesday has said that the people-to-people contact between India and Pakistan is the best way to break the deadlock. He has said that this should be tried more and more now. And he has said that this is the one hope, I think, because I believe strongly that ultimately civil society relations will work, because we have a cultural relation and we have been one nation. That has to be emphasized. He was specifically asked how India should deal with Pakistan and its continued sponsorship of terrorism. And for that, Dattatreya Hosable said that everything has been tried diplomatically and Pakistan keeps making pinpricks. He cited the terrorist attacks of 2611, Pulwama and Pahalgam, talking about how the security and self-respect of the country has to be protected and the government of the day should take care of that. But at the same time, he said, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in a dialogue. He's also said that trade and commerce and issuance of visas to persons from Pakistan should not stop, because there should be an open window for dialogue. This is a detailed statement regarding an interview that RSS's General Secretary Dattatreya Hosable has given that was published on Tuesday, where he has emphasized that diplomatic relationships have been maintained between India and Pakistan, that academicians, sportspersons, scientists and community leaders should come forward in this endeavor, and their political leadership and military leadership have developed some aversion to India. Himanshu Mishra joins me on this story. Himanshu, a big statement from the RSS General Secretary calling for people-to-people dialogue between India and Pakistan, saying that the doors and windows should not be closed. Academicians, sportspersons, scientists, community leaders should come forward. Himanshu.
1: देखिए, बिल्कुल आरएसएस के जो सह स्तर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, कल उन्होंने एक एजेंसी को इंटरव्यू में ये साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जो है वो डायलॉग चलते रहने चाहिए. डिप्लोमेटिक स्तर पर जो जवाब देने हैं वो भारत सरकार दे रही है, लेकिन इससे आगे आकर दोनों ही देशों के बीच में जो है वो बातचीत होनी चाहिए और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए संपर्क बहुत अहम चीज है, और इसलिए बातचीत के लिए जो है वो रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है ट्रैक टू ट्रैक डिप्लोमेसी पर चुप है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने लंबे समय से नागरिक समाज के स्तर पर संवाद किया. कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार, वाणिज्य, वीजा जो जैसी चीजें हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संवाद के लिए हमेशा एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, यानी एक विंडो आपको खुली रखनी चाहिए जिससे जो है दो देशों के बीच में जो है कम्युनिकेशन जो है वो चलता रहे, और वीजा की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाना चाहिए, और चाहे एजुकेशन के स्तर पर या
0: तब देख रहे हैं कि दत्तात्रेय होसबले ने ये बात कही कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट लगातार चलता रहना चाहिए. पर पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है, खासतौर से पहलगाम अटैक के बाद हमने ये देखा कि स्पोर्ट्स हो, खेल की दुनिया हो, कोई फिल्म स्टार्स हो, सिंगर्स हो, कोई जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, खासतौर से कल्चरल कॉन्टैक्ट था, उसको लेकर काफी अटकलें उठी, काफी क्रिटिसिज्म हुआ है भारत में कि क्यों कोई भी कॉन्टैक्ट बना के रखा जाए. आपने एक्टर्स को, सिंगर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आरएसएस के नेता ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए।
1: देखिए बिल्कुल आरएसएस की तरफ से ये भी कहा गया है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले पहलगाम के बाद खासकर जो है किसी भी ऐसा कोई वो नहीं है कि डायरेक्ट कोई यानी दो कंट्रियों के बीच में कोई भी संवाद रहा हो या किसी स्पोर्ट्स के जरिए या कोई अन्य क्षेत्र में। हाँ, अगर जो है उसमें कई देश भाग ले रहे हैं, मल्टीनेशन कंपटीशन है, मल्टीनेशन पार्टिसिपेशन है, उसमें भारत जरूर जो है वो पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन बायोलेटरल स्तर पर जो है वो इस तरीके के ना स्पोर्ट्स या अन्य इवेंट्स पे भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। और यही कारण है कि भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आप जो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी अगर पहलगाम की तरह दोबारा कोई घटना हुई तो भारत उसे जो है एक युद्ध के स्तर पर ही देखेगा। और अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी उसके वन ईयर कंप्लीट हुए हैं और सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी ऑनगोइंग है। कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का जिस तरीके का टेररिज एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन रहा है अगेंस्ट भारत, उसको लेकर भारत बहुत सजग है और भारत की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। लेकिन संघ की तरफ से अगर ये आया है, आरएसएस के नंबर टू है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आप उन्हें देखते हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, ट्रेड में होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, अन्य कम्युनिटीज के अंदर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो डायलॉग होना चाहिए।
0: बहुत धन्यवाद ये इस बात पे हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द स्टोरी। But this is a contentious issue, especially post Pehelgam, where contact has been under question. We've also seen the way the government and the MEA have been have, as Himanshu was also saying, cut direct diplomatic contact with Pakistani agencies. But let's move on to our next big breaking news. Vijay expresses gratitude after the trust vote win. Vijay has taken to social media with a post expressing gratitude after the winning the trust vote in the House in Tamil Nadu. He says, confidence motion seeking public trust in the people's government that has established a democracy with a conscience was brought to the assembly today. The confidence motion supported and voted in favour by the people through public trust has been victorious for our government formed thereby. On this victory, we express our heartfelt gratitude to all esteemed party leaders who support us and to all honourable assembly members from those parties. At the same time, we convey our affection to our party assembly members who always stand with us. At this juncture, it is our duty to once again express our thanks to all the people who trusted us in the election. Thanks to all the people of Tamil Nadu. Remember, Vijay has won the floor test in Tamil Nadu with 144 votes, including 22 AIADMK votes, which went against Vijay in the trust test. 25 MLAs from AIADMK rebel camp supported Vijay. So 144 votes for Vijay as TVK forms the government in Tamil Nadu. But it's time now for us to go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the updates of the market. Sakshi, over to you.
2: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
3: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
4: Well said, well said, well said.
3: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
5: Presented by National Stock Exchange.

0: प्राइम मिनिस्टर ने बाकी मिनिस्टर्स को भी कहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने जरूरी होंगे?
1: देखिए, इसको अगर ऑस्टेरिटी आप ना कहें तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक अपील की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके के मिडल ईस्ट एशिया के अंदर हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, एक तो फॉरेन रिजर्व जो है भारत का वो कम ना हो, क्योंकि 85% जो है वो फ्यूल जो है वो भारत इंपोर्ट करता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी कि आप जो है अगर कार से चलते हैं, अगर आप कार का उपयोग मत कीजिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए, अगर आपको जरूरी है तो कार पूलिंग कीजिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हैदराबाद में अपील की, उसके बाद वडोदरा या गुवाहाटी के अंदर आपने देखा होगा कि उनके केवल केट में जो है गाड़ियों का जो फ्लीट है उसको कम किया गया, और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोक कल्याण मार्ग से सुबह कैबिनेट के लिए निकले तो वहां से कैबिनेट की बैठक के लिए वो दो गाड़ियों में पहुंचे, यानी दो गाड़ी जो है उनके फ्लीट में थी, एक गाड़ी में वो जिसमें वो खुद सवार थे, उनके साथ एसपीजी कमांडो थे, और पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें एसपीजी कमांडोस थे। और ये भी इसलिए दो गाड़ियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया क्योंकि एसपीजी के कुछ रूल्स होते हैं प्रोटेक्शन के ब्लू बुक के तहत, उन ब्लू बुक्स के जो रूल्स हैं उनका निर्वहन करना वो मैंडेटरी होता है, और इसीलिए इस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो दो गाड़ियों का उपयोग किया, और वो सीधा जो है वहां अपने घर से कैबिनेट के लिए पहुंचे थे जहां उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग हुई, और ये एक तरीके से मैसेज दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो दो गाड़ियों में चल सकते हैं जिनको देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा एसपीजी देती है, वो वहां अगर वो दो गाड़ियों से चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, या प्रदेश सरकारों में मंत्री हो, या अन्य सांसद हो, विधायक हो, वो उनको भी अपने जो काफिला है उसमें गाड़ियों की संख्या को कम करना चाहिए। ये सिर्फ राजनेताओं के लिए संदेश नहीं था, देश की जनता से भी अपील की है, और उसका पालन जो है उसको सबसे पहले जो अपील उन्होंने देश की जनता से की है उसको अपने ऊपर सबसे पहले उन्होंने लागू किया, और लागू करके ये जो शॉर्ट्स हम देख रहे हैं उसमें दो गाड़ियों
0: ये जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का काफिला कम हो सकता है तो बाकी लोग भी काफी कुछ कर सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे और मिनिस्टर्स को भी ये हिदायत दी गई है, बाकी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को भी हिदायत दी गई है। आज सुबह हमने देखा कि कम से कम दिल्ली में तो कुछ मिनिस्टर्स मेट्रो लेकर जाते घूमते दिखे थे, मेट्रो में घूमते दिखे थे। फॉरेन ट्रिप्स जो हैं उस पर काफी सवाल, काफी अटकलें भी उठी हैं कि जो भारत के मिनिस्टर्स हैं वो बार बार अलग अलग मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल उठा था कि आपने इतना बड़ा रोड शो किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स आप अनाउंस कर रहे हैं लेकिन आपने रोड शो भी किया, आप इतनी जगह पर घूम रहे हैं, तो इस सब को लेकर आप किस तरह देख रहे हैं मानशु ये कि फ्यूल की शॉर्टेज भी एक तरफ हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज का भी सवाल उठा है इकोनॉमी पर, और किस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स किस तरह से की जा रही है?
1: देखिए, ऑप्टिक्स एक तरीके से ये है कि उन चीजों में कटौती करने की प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है जो आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, और क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो उस पे आपको ज्यादा जो है इंडियन करेंसी फॉरेन में देने पड़ती है और फॉरेन रिजर्व पर उसका सीधा असर होता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल की बचत हो, इसके लिए आप जो है कार का कम से कम यूज कीजिए, अगर यूज करना है तो कार पूलिंग कीजिए, नहीं तो ईवी का यूज कीजिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो यूज कीजिए। उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि गोल्ड की जो शॉपिंग है या गोल्ड खरीदना है उसको एक साल के लिए कम कर दीजिए, क्योंकि गोल्ड भी जो है वो भारत इंपोर्ट करता है, पेट्रोल 85% के करीब जो है वो भारत इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस चीजों की उपयोग इंपोर्ट भारत करता है उसका उपयोग अगर कम किया
0: जाएगा। Coming in. And as we talk about the austerity measures and rationalizing fuel usage, Air India has officially accepted trimming of its international operations. Air India has rationalized its international route network through August 2026 to continue operating 1,200 plus international flights every month. Air India will proactively assist customers with bookings affected by cancellation through this period with re-accommodation on alternative feasible Air India flights free date change or full refunds as applicable. Announcement made after the Prime Minister's call for not just austerity measures but also saving fuel. Air India has officially reworked its operations. It will continue 1,200 plus international flights, but it has rationalized its routes. And for any passengers who are being affected till or throughout August 2026, the steps will be taken to assist the customers. Amit Bhardwaj is joining me on this story. Amit, what exactly has Air India said and what does it mean when they're trimming their international operations?
2: Well, Anisha, this was pretty much on the cards as far as Air India is concerned because they have been going through a troubled waters for quite some time now. The reason being that, there is airspace restriction because of the Pakistan airspace being closed as well as as far as the Middle East crisis is concerned, there was further airspace restrictions coming in, the depleting currency exchange rate, that was troubling them. And along with that, APF prices, that is air turbine fuel prices, that's surging. So it was creating a lot of trouble for Air India's international operation, and they had given us an indication that this was on the cards. The trimming of international operations in the month of June and July is to happen. Now that official announcement and acceptance by Air India has been also done. So as far as the flights are concerned, international flights for North America, Europe, Australia, Far East, Southeast Asia, SAARC countries are getting trimmed at this point in time. But despite that, Air India says that their 1,200 flight operations will continue. So this is a really tough period.
0: Air India says they are officially trimming international operations. What kind of assistance will they give to the customers? Because it is the consumers, it is the passengers ultimately, people who may have already booked tickets for June, July, because that is also vacation time, school vacations time when a lot of people travel. How exactly are they planning on helping the consumers, helping the people who may be affected? We seem to be having issues with the connection here. Just a moment. Amit, if you can hear me, we are just getting a connection back. Amit, if you can hear me, what kind of help are they extending to the consumers who already purchased tickets or who have urgent flights to take?
2: Anisha, in this particular case, what we will see is that Air India will be looking for, either refund or rescheduling of the flight. For instance, if you see Delhi-Chicago, that is temporarily suspended, Delhi-San Francisco, that has been reduced from 10 to 7, times in a week time to August. So what will happen is that, in case if your particular flight has been cancelled because of this particular scheduling, rescheduling and trimming, so it could be actually put on to the other flight, which is flying that week, or refunds can be given to the customers. So Air India is saying that they are in the phase of transition right now as far as their schedules are concerned. And they will be trying out the way to ensure that the passengers do not face a lot of trouble. You are rightly pointing out the fact that this also happens to the time when summer vacations are, scheduled for tourists. So a lot of tourists are flying out of India, and many of the tourists also fly into India during this particular phase. This is a very good time as far as the aviation sector is concerned and the tourism field is concerned for outbound flights as well as the inbound flights. So Air India is trying to figure out that method, and they're saying that we are constantly in touch with the authorities as well as ready to provide support to the customers. Thank you.
0: All right. Thank you very much for that, Amit Bhardwaj. Air India is rationalizing its routes. So all the people, all the consumers who have already booked flights or are planning to take a flight out of India in the next 2 months, that is June, July, all the way through August, all of them must be careful. They must take a look at the scheduling that Air India is talking about. As my colleague Amit Bhardwaj was just saying, some flight routes have been trimmed. Maybe the flight that goes every day may not be going. So for consumers, it's an important aspect that we will be bringing to you. But that's all we can pack in for you in this edition of the news. More news and updates will continue on the other side of a very short break. Keep watching.
3: You are watching India Today.
4: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits...
3: Somebody save me.
2: ...to timeless favorites.
4: Life is like a song.
2: And new discoveries.
5: That's so much more than a history. Wake up!
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: And even prefer Indian holidays over overseas vacations.
8: हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे.
7: He repeated the austerity call on Monday in Gujarat, Somnath.
8: ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है. साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं?

0: सुई कही है, वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा ही है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी।
1: देखिए, मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी कि ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे हैं क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
2: Without 12, we forfeit.
3: Well, down to 11, we will lose.
4: So what's the plan?
5: We need Jessica.
2: She's not ready.

0: Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: एक भी देश नहीं है, किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने दो स्टेप, किसी ने, लेकिन ये सात इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति केवल इराक अमेरिका के युद्ध की बजाय और भी कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? तो मैं दूसरी, मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The Tailgate Top 20.
2: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
1: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: Try to keep up.
4: हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, सारी दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं उस युद्ध की वजह से। लेकिन किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म की ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। एक भी देश नहीं है, किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने 2 स्टेप, किसी ने, लेकिन ये 7 इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति केवल इराक अमेरिका के युद्ध की बजाय और भी कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है, हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो मैं दूसरी मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई।

खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। NDA 1, NDA 2, NDA 3 ये जो पीरियड है इसमें 19,00,000 करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
1: somebody save me,
0: to timeless favorites,
1: and life is like a song,
0: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: You and that's so much more than a history.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
4: He repeated the austerity call on Monday in Gujarat, Somnath.
3: ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं?